हाँ जी ग्रांड ओरिजिन कुत्ता सवेरे रेडियो अमन एफ एम अट्ठासी शरीय 4/ग्राम प्रोग्राम दे से मंगाया दी 4K कॉस्मेटिक सिंह बताओ सर आदि ओले सुना दूले सुबह जो पूरी

0: सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा। रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
2: द मुसाफर साख तरवी नरे नरे जड़ा कवि कूर यादवी। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो उदुन को जयम अदान सत शाहान दमा लखवा और द रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम द टूल टीम लखवा तास्टोल उता लुए अख्तर डेर डेर मुबारक शा।
3: शरीक चे दे यौबल पो खुशालो के बराबर हुई, शरीक चे दे यौबल पो खुशालो के बराबर हुई, हम दगसी अख्तर हुई, चटोल खलक दे यौबल दे जज्बातो न खबर हुई, हम दगसी अख्तर हुई। अस्सलाम वालेकुम, जेम असदुल्लाह खान लगमानी زمادہ اڑخا او د ریڈیو امن د ټول ټیم د اڑخا تاسو ته د غټ اختر خوشالۍ ډېرې ډېرې مبارک شه۔
1: شکریا، آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا۔

0: है बिल्कुल जनाब सुखान तरफ तो गुरु सुख दियो तो कम जेने दी अस्सलाम वालेकुम खैर मुबारक खैर मुबारक जमा दी तरफ तासु तुम ढेर अख्तर मुबारक शाह खैर दे जी शुक्र दे सो करोड़ जाना उदा कम
1: जेना
0: तू ते रहमान से प्रोग्राम कर कले वायो हडेरा मन ना सिंह अख्तरों
1: का
0: अख्तर के सो
1: उकड़ा
0: खा चक्कर उतरते लिए चक्कर खाला बदागुआने कबाब जोड़े बिल्कुल जो तखपुल मनोदासरी मुख बस खैर दा पकी राजी मैं मीनावाल में इंतजार कवि जी सासु आवाज कट की गई डेरा मन न कुम चाहते दवा सलाम ले गए
1: बस
0: वालेकुम सलाम डेरा मन न
1: जी
0: बस ये दक्कम मजेदार था घर मकान था बस तासु वाह रे हाँ मेहरबानी शाला उसे

0: Voilà.
1: Continue,
0: किसी
1: continue.
0: ने सच कहा है
1: जी,
0: किसी ने सच कहा,
1: सच
0: है,
1: कहा है
0: कि कोई कुर्बान होता है, किसी ने सच कहा है कि कोई कुर्बान होता है, तो किसी की ईद होती है,
1: तो किसी की ईद होती है
0: और कोई कुर्बान
1: और कोई कुर्बान होता है।
0: हाय अल्लाह,
1: हाय मतलब दाश रोज कल गोरे मुंग जानवर मुंग मैंने कुर्बान छी ना
0: जी,
1: और जमुंग अख्तर दास दे चा पूरा दजड़ा अरमानो न पचा कुर्बान छी और दबल चा दास अख्तर रे रमा सके
0: वो यार चिस्तान द दर गुलाम वे दर प मतलब वकी निज देखेगी प गम प वखरा न बेलेगी जमा प गम च खुशालीगी तब वियात कज दे हिर कड़े मां गुलाल राशन अख्तर दे خپ میتا پسی جگر دے دغم نہ ڈکتا ماضی کر دے خوشحالی نشتا

0: अपने वतन की तरक्की के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जज्बाए हुब्बुल वतनी का शुक्रिया कि जिन्होंने इंतहाई कम मुद्दत में स्टेट बैंक की खुसूसी पेशकश रोशन डिजिटल अकाउंट को शानदार कामयाबी से हमकिनार करवाया। पाकिस्तान में इंतहाई कम मार्कअप पर रोशन अपनी कार से गाड़ी हासिल की और अपनों की जिंदगी में खुशियां फैलाई। आज ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट विजिट करें और रोशन डिजिटल अकाउंट खोलकर कामयाबी के सफर में शामिल हो जाएं।
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
2: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
4: گران اور ادن کو دا امن ریڈیو FM 88.4 بٹا گرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آوری۔

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।